0: हेलो बटन।
1: हाँ जी, ये नाम है इस तरह हन, अगमप्रीत कौर, अंबर कौर, अनंत सिंह, अनूप सिंह, आशीष रंधावा, अमनीत जी कौर, अमनीत कौर बापला, एकजाप कौर सैनी, गुरजाप सिंह संधु, गुरजा सिंह संधु, हरलीन कौर गिल, इनायत कौर, जसनूर सिंह आलूवालिया, जसरीत कौर, कायनात कौर सोहल, रहमत कौर गुराया, सहजप्रीत कौर, सहज कौर डॉक्टर मनजीत सिंह, सहज कौर डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, सहज सिंह गिल, जायन रोल्स, अनमोल कौर, फिर है जी एकम सिंह, अनायत कौर, अरबाज सिंह, अरमानी कौर, दिनाज कौर सहोता, एकम ज्योत कौर रंधावा, इमाया कौर तूर, गुरदित सिंह, गुरसिमर कौर, हरनिहाल सिंह, जपलीन कौर रंधावा, जसवंतदीप कौर शेरगिल, जसमीन कौर खतरा, जुजार सिंह सेखों, मन्नत कौर, मनतेज सिंह मिनहास, परनीत कौर, समर्थ सिंह ते संदीप सिंह। इस सतगुरों अगे नाम अरदास आप सारे करनी है। हाँ जी,
2: एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह, श्री भगौती जी सहाय, वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक ले ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिय कर नौनिद आवै ताए, सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार का ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता, तिन्ना प्यारियां सच्चियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां, चर कड़िया ते चढ़े तन आर्या नाल चराए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी कैसा स्वासा नाल निभाहे, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा तख्ता अते सरबत गुरुद्वारियां दे ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचया रियायत, देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान परोसा दान दाना सिरदान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इश्नान, चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पद दा राखा आप वाहिगुरु, हे अकाल पुरख आप अपने पंथ दे सदा सहाई दा ताजियो, समूह गुरुद्वारियां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो, हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तान नियोटियां दी ओठ, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी अगे अरदास बेनती है, गुरमत खालसा स्कूल रेंटन दे बच्चियां जिन्ना दा जन्म मई अते जून दे महीने विच होया है, नाम आप जानी जान हो उन्हां बच्चियां ते मेहर परिया हाथ रखो जी, गुरमत अनुसार कारज रास करने दुनियावी अते गुरमत दी विद्या दा तारणी बनाना, सारे बच्चियां मापियां अते सरबत संगत दे हाजरी प्रवान करनी, हुईयां बेअंत पुलना बख्श लैनियां, सही प्यारे मेलो जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा पला। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अत भुज खान बहर रच दीनी, कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट पर शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप सियम भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संघरो, दुष्ट जिते उठ बत उत्पाता। सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तो हवे मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट समटारे। जो कल को एक बार त्याए है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होता है सब काला, दुष्ट अरिष्ट रहे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि न हर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुर छाछ सकै न कोई। एक बार जिंत मन संभारा, काल पास ते ताहु बारा। जिन नर नाम तिहारू कहा, दर्द दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप दैले हो बारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लेह बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुव्रता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को छै करता। श्री अस तुज जप है दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख नत सब व्यापत कोई अड़िल।

अकेला है। ओ जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई, संबत सत्रह सहसपुण जाए अर्ध सहस पुण तीन कह जाए। भाद्रव सुदी अष्टमी रव बारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रप ख्याने त्रियं त्रित्रय मंत्री भूप संबादे 405 चरित्र समाप्त। मस्त शुभ मस्त आप जू दोहरा। दास जान कर दास पार की जय कृपा अपार। आप हादर राख मोहे मन क्रम बचन विचार चाव पाई। मैं नग्न साय प्रथम नाऊ केशन बेशन कब हूं न त्याऊ। कान सुने पहचान तिन सौ लिव लागी मोरी पग इन सौ। महाकाल रखवार हमारो महलो मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार बाह गह की लाज विचार। अपना जान मुझाए प्रत परियाए चुन चुन सतर हमारे मरियाए।

नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदाओं कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बेकार तिन संतन कौ बंदना सिर चरणन परतार एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद।

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚੇਹਨ ਅਰਬਰਣ ਜਾਤ ਅਰਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਹਿ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੜੇ ਭੇ ਕੋ ਕਹਿਣ ਸਕਤ ਕੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੋਚ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹਿ ਸਾਹਣ ਗਣਿਚੈ ਏ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਮੇਹਿ ਸਰਨ ਅਰ ਅਸਰਨ ਏਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰੈਣ ਕਹਿਤ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਣ ਸਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦੈ। ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੀ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮ, ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹਿ, ਨਮਸਤੰਗ ਟਾਹੀ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੀ, ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੀ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰਮਾਨੀ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੀ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੀ, ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੀ, ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰਭਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਮੇ, ਨਮਸਤਸਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੀ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੀ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਦਬੇ, ਨਮਸਤੇ ਦੇਸੰਗ ਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ, ਨਭੰਗ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਭੰਗ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਭੰਗ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਨਮ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਪੇ, ਨਮ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੇ ਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇ ਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਭਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ, ਨਮ ਸਰ ਭਾਉਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਨਮ ਸਰ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸ ਤਸ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਤਾਰੰਗ, ਨਮ ਸਰਬ ਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸ ਤਸ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖ, ਨਮ ਸਰਬ ਭੋਖ, ਨਮ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਨੂਪ ਹੈ ਜੂ ਹੈ ਭੂ ਹੈ ਲੇਖਾ ਭੇਖਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਹੈ ਧੇ ਹੈ ਭੇ ਹੈ ਜੀਤਾ ਪੀਤਾ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗਿਆ ਸਰਗਿਆ ਨੀਲ ਹੈ ਨਾਦਿਆ ਜੇ ਹੈ ਜਾਦ ਹੈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰਣ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਭਰਨ ਹੈ ਗੰਜ ਹੈ ਭੰਜ ਹੈ ਝੂਜ ਹੈ ਝੰਜ ਅਮੀ ਕੈਰ ਫੀਕੈ ਧੰਦ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ ਨਿਰਭੂ ਧੰਦ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ ਨਿਰਭੂ ਜੈ ਸੂ ਜਿਹ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਲ ਹੈ ਲਾਹ ਹੈ ਜਾਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਸ੍ਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਭ ਹੈ ਸਮ ਹੈ ਗਮ ਹੈ ਜਮ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਸੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕੈ ਸੋ ਕਹਿ ਕਰਮੈ ਭਰਮੈ ਜੀਤੈ ਪੀਤੈ ਬਾਹ ਹੈ ਗਾਹ ਹੈ ਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਵੋ ਸਰਮਾਨੇ ਸਮਸਤ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਭੇਖੇ ਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਤ੍ਰਿਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮ ਸਰ ਭਾਉਣੇ ਅਨੰਗੇ ਅਨਾਥ ਨੇ ਸੰਗੀ ਪਰਮਾਤੇ ਨਮ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮ ਤਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਤੇ ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾਨੀ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰਾਜੀ ਸਵਰੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੀ ਸਵਰੰਗ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰਾਜੀ ਸਵਰੰਗ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੀ ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਬਾਣੀ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਅਪੇਖੀ ਭਰਮੀ ਭੋਗੀ ਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੀ ਸਵਰੰਗ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇ ਦੇਵੇ ਸੁ ਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਮੋ ਭੋ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਅਨੂਪੇ ਰੂਪੇ ਸਮਸਤ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ ਅਦੋ ਉਰ ਦਰਦੰਗ ਅਗੰਗ ਉਗਰਤਾ ਪਰਮ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੰ ਪੁਸ਼ਪਾਲੰ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਸਦਾਤਾ ਦਿਆਲੰ
अछेदिया भेदिया नाम काम समस्त उपराधी समस्त स्थान तेरा जोर चात्री छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं दिस हैं पे सै भुजह प्रया छंद अगाधि अबाधि अनंदी स्वरूपे नमस्कार मान्य समस्त निधाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो बाह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृष्णंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीबीजे अखिजे पिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे को कर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदंग निवासी चरपट छंद प्रसाद अमृत करमे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल त्रमंगला करमंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग बाने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग करमंग भगत सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूवाल छंद त्व प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त जौन पुरख पार सर्व मान तन मान देव पे वाद दारु सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन कालु जतर तत्र विराजे ही अवधूत रूप रसालु नाम ठाम न जात जाग रूप रंग न रेख आदपुर कदान मूर्ता जवन आदा शेख देश और न पहजा कर रूप रेख न राग जतर तत्र दिशा बिशा हो फैल और राग नाम काम विहीन पेख तम न जाय सर्वमान सर्वत्र मान सदा मान ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीर्ण रूप अनेक खेल खेल अखेल किरण अंत को फिर एक देह पे न जान ही जेह वेद और कतेब रूप रंग न जात पासो जो नहीं के जेब तात मात न जात जाकर जन मरण विहीन चक्कर बकर फिराए चतर चक मान ही पुरतीन लोग चौदह के बिखाए जग जाप यह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सबह जि थाप परम रूप परनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विषय व्रच्यो सजियम पवगरण पंजन हाल कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रात भूता लख भेस अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भगंजन दुष्ट भंजन मुक्त दाय काम आप रूप मीका अनुस्तुति पुरख अवधूत गर्भगंजन सर्वभंजन याद रूप अछूत अंगहीन भंगनात्मिक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्व त्यन भेख सर्व शासन जानी जेह रूप रंग अरलेख परम वेद प्राण जा कह नित भक्त नितो कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवे बहुत चितो मद भार छंद तप साध गुण गण उदार महिमा पारासन भंग उपमानांगन भव प्रकाश निस्तन अनास आजन बाहु साहुन साहु राजन राज उपान अनपान देवान देव महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंग करण कालन कालन भूत अंगाप भंग गात मित पार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भैने काम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अल सह कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाड अंडन बाढ़ चाची छंद प्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारी पारे हरियं करियं रणामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रै न मित्रै न परमंग न पितरै न कर्मंग न काये जन्मंग अजाये न चित्रै न मित्रै पर्याय पवित्रै प्रतिसै अदिसै अदृश्य अकृसै भगवती छंद प्रसाद कथ दे के अछज दिसै के अभिज पिसै के अगंज कर मैं के अपंज पर मैं के अभिज लोकै के अदित सुकै के अवधूत वर्ण के विभूत करण के राजिंग प्रभ के त्रमंग तो जाहे
के अशोक वर्ण के सर्वा भरण के जगत कृतिय के छद्रंग छत्रिय के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपह अनुप है के आद अदेव के आप फेव के छद्रंग बिहिन्न के एक अधीन के रोजी रजा का रिहिमा रया का के पाक बेया बे के गैबल गैबे के अफल गुना है कि साहन साह के कारण कुनिंद है कि रोजी दिहंद है कि राज करीम के कर्म करीम के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गौने हैं के सर्वत्र पौने के सर्वत्र दिशा हैं के सर्वत्र पिसाई के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पिसा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र घंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र माने सदा प्रधान के सर्वत्र जापे के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पाना के सर्वत्र माना के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वंग कलीम के परमंग अफीम के आकल अलाम के साहिब कलाम के हुसनल वजू है तमाम हमेशल सलाम सलीकत मदाम गनी मुल सिकस्त है गरीबल प्रस्त है बिलांदल मकाना जिमिल जमाना है तमिल तमाम है रुजल नदाना है हरि फल जी मर जाग जकीना अनेक तरंग है भेद है भंग है जीजल नवाज है गरीबल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है भेदी अनुप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव कम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है रूप है ओ अंग आद रूप है अनाथ रूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्ग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सुरभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है छेज है छूत है के नरक पुरना से है प्रतिल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनुप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनुप है चाचरी छंद है अभग है अनंग है अपेख्या लेख्या भरम करम नाद जुगादया जय है वह है भूत्या तूत्या नाश दास्या धंद बंद है अभगत है विरक्त है नास प्रकाश है नचिंत सुनंत अलिख्या दीख है लिख है भिखट है गह है सम है गम है नील है नाद है नित है सुनित है जात है जाद है चरपड़ छंद प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंताओ सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाताओ सर्वंग हरता सर्वंग करताओ सर्वंग प्राणु सर्वंग त्राणु सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ताओ ऋषावल छंद प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अभंगंग विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मत न जात न पात नरसाकु सरी क अमित अमी क सदैव प्रभ अजय अजा है भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है मेसर सलाम है समसल कलाम है के साहिब दिमाग है के सुनो चिराग है के काबिल करीम है के राज कर रहीम है के रोजी देहंद है के राज कर हिंद है करीमल कमाल है कुसन जमाल है गरीमल कराज है गरीबल नवाज है हरि फल सुकान है रासल पकान है कलंकम प्रणास है समस्त निवास है अगंजल गनी मेर जाय करही मैं समस्त जुबाह के साहिब ग्रह के नरकु प्रणास है मेरे पिन के नरकु प्रणास है बहतल निवास है के सर्वल गवन है मिश्र रवन है तममल तजी मैं समस्त अजीज है परम परमी समस्त अधीश है निश्चल लेख है मिश्र भेख है जिमिल जमाह है निकुल माह है

0: ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त जूनी सब हंगुर प्रसाद असम हला पहला वर श्लोक नाल श्लोक की माले पहले के लिखी टुंडी असरा जी की तुही श्लोक महला पहला बलहारी हुआ अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागीवार महला दूजा
1: जय सौ चंदा।

सद जुग जुग अटल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट शुक्रा जिन्हां ने अपार मेहर करके अमृत वेले पावन पवित्र हजूरी अंदर शुद्ध कीर्तन नाल जुड़ करके सत्संग दे लाहे बख्शे। अज धन धन भगत कबीर जी का जन्म दिहाड़ा है। सब नूं वधाईयां। सतगुरु ते भगत जी कृपा करन उन्हां दीआं सिक्ख्यावां ते सारे नूं चलण दी समर्था बख्शिश करन जी। आओ सरवण करिए लड़ीवार शब्द विचार ज्ञानी दर्शन सिंह जी होरां पासों। वाहिगुरू।

मनोहर प्रभेरा सदगुरु दयाल हर नाम दृढ़ाया हर पादर हर प्रभु केरा हर रंगी हर नाम प्रपाया हर गोविंद हर प्रभु केरा हर हृदय मन तन मीठा लागा मुस्तक मुख मस्तक पाग चंगेरा लो विकार जना मन लागा हर विसरिया पुरख चंगेरा ओए मन मुख मूड अज्ञानी कई है तिन मस्तक पाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाए गुरु ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुर मस्तक भाग लखेरा टोडी मल्ला पंजवा कर पहला दोप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद संतन अवरण काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी राव ऊच समाना ठाकर तेरो अवरण काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी निरपो होए रहे लिव एक नानक हर मन मानी जय श्री मल्ला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ता को तोखा कहां ब्यापे जा को उठ तुहारी रहा बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्व जैसे अर जारी नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी गुण निदान गुण तिन ही गाए जा को कृपा धारी सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी मल्ला पंजवा घर दूजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दै दिस तायो माया मगन स्वाद लो मोयो तिन प्रभ आप भुलायो रहा हर कथा हर जस साध संगत स्यों एक मोहत न ए मन लायो मिक्स उपेख रंग कुसम को पारगे जो न जायो चरण कमल स्यों भाव न कीनो न सतपुरख मनायो तावत को तावे बो पाती जो तेली बलद परमायो नाम दान इसनान न कियो एक निमख न कीर्त गायो नाना झूठ लाए मन तो क्यो न बूझो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर से उदे आयो पंच दूतरा संगत गोष्ट मतवारो मदमायो करो बेनती साध संगत हर भगत वशल सुन आयो नानक पाक प्रियो हर पाछा राज लाख अपनायो राख लाज अपनायो टोडी मल्ला पंजवा मानुख बिन बूझे बिरथा आया अनक साज सिंगार बो करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपण सब कीने कीनो एकत्र करी है माया दान पुण्य संतन सेवा किसे कित ही काज न आया कर आभरण सुवा जी सेहा कामन ताट बनाया साग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया सारो दिन समझूरी करता तो मूसले शराया खेद प्यो बेगारी न्याई कर कै काम न आया पयो अनगुरु जा को प्रभ को तिस हृदय नाम साया साध संगत कै पाछ परियो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निध बसोर दे हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो तू राम मस्तक ले ले लावो मां पतत से होत पुनीदा हर कीर्तन गुण गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो क्यों तुहारो पावो जो तू दे तई ए तृप्त आनंद कतू तावो साधी निट जानो प्रभ स्वामी सगल रेन होए रही है साधु संगत होए पुरापत ता प्रभ अपना लिया

जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम देवायो, सर्व सुख हर नाम डाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राग तलंग महला पहला, कर पहला एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। यक अर्ज कुफतम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअबत परवरदगार, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुए अजराइर गिरफ्तार, दिल चन्ना दानी रहा, जन पिसर पदर बिरादर कसनेस दस्तंगीर, आखक बेअफतम कसना नारद दारद, चू शब्द तकबीर, सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार कर दम मम ईंच नी अहवाल, बदबक चाम सुबखील गाफिल बे नजर बेबाक, नानक भुगो यद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। तलंग महला पहला, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। पो तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत, मैं दीवाना पाया अतीत, कर कासा दर्शन की भूख, मैं दरमांगो नीता नीत, तो दर्शन की करो समाए, मैं दरमांग तू पीख्या पाए, रहो केसर कुसुम बनक मैं हरना, चरबदरी रे चढ़ना, चंदन भगतां जोत इन्ने ही सरबे बलबन करना, के पट पांडा के न कोई ऐसा भगत वरण मैं हो, तेरे नाम ने मेरे हिल लाए, नानक तेरे दर पीख्या पाए। तलंग महला पहला, कर तीजा एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद। एह तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लाभ रंगाए, मेरे कंतन पावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन से जय जाए, हो कुर्बान जाओ मेरवा ना, हो कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, तिना के लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा नाम, तिना के हो सतगुरु बन जाओ, काया रंगन जीतिया प्यारे, पाया नाम जीठ, रंगन वाला जे रंग साहब ऐसा रंग न डीठ, जिनके चोले रड़ते प्यारे, कंत तिना के पास, धूड़ तिना की जी मिला जी को, नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामन कंत पावे आपे ही रावे। तलंग महला पहला, या नड़िए मानड़ा काय करे, आपने कर हर रंगो की नामे, माणे सो नेड़े तन कमलिए, बार क्या टूडे, पै किया दे सलाया नैनी, भावक कर सिंगारो, ता सो हागण जानिया लागी, जा सो तरे प्यारो, यानी बाली क्या करे, जातन कंत न पावे, करण पला करे, बो तेरे सातन मैल न पावे, बिन कर्मा किस पाई है नाही, जे बो तेरा तावे, लब लोभ अहंकार की माती, माया माए स्या समाणी, इनी बाती सो पाई है नाही, पई काम यानी, जाए पुछो सुहागनी वाह है, किन्नी बाती सो पाई है, सो किछ करे, जो किछ करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाई है, जाके प्रेम पदार्थ पाई है, तो चरणी च तलाई है, सो कह सो कीजै, तन मनु दीजै ऐसा परमल लाई है, एव कह सुहागनी भैने, इन्नी बाती सो पाई है, आप गवाई है ता सो पाई है, और कैसी चतुराई, सो नदर कर देखे सोदन लेखे, कामन नौनद पाई, अपनी कंत प्यारी सा सुहागण, नानक सा सबराई, ऐसे रंग राती सहज की माती, ऐन सिपाही समाणी, सुंदर साय स्वरूप विचखण कही ऐसा सियाणी। तिलंग महला पहला, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसला करें ज्ञान में लालो, पाप की जंगल काबलो ताया, जोरी मंगे दान में लालो, सर्म धर्म दो छप खलोए, कूड़ पड़ा प्रधान लालो, काजियां वावना की गलत की अगत पड़ा सैतान में लालो, मुस्लिम मानिया हुए कथे बा कष्ट में करें खुदा है वे लालो, जात सनाती होर हिंदवाणिया बेले कहलाए वे लालो, खून के सोयले गावे नानक रात का कुंगू पाए वे लालो, साहेब के गुण नान गावे मास पुरी आंख मसोला,
ਜਿਨੂ ਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵੱਖ ਕੇਲਾ ਸੱਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਤ ਪਾਵ ਸੱਚੜਾ ਨਾਉ ਕਰੇਗ ਮਸੋਲਾ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਮੋਲਾ ਅਮਨ ਠਤਰੇ ਆਵਣ ਠਤਰੇ ਜਾਣ ਸਤਾਨਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸੀ ਮਰਦਗਾ ਚੇਲਾ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਏਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਆਏ ਹੁਕਮ ਖਸਮਾਹ ਹੁਕਮ ਸਭ ਵਰਤਨੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਖੇਲ ਹਰਦਨੀ ਸਾ ਲਾਇਓ ਸੱਚ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹਰਤਨੀ ਜਿਸ ਨਾਈ ਕੋਈ ਸਰੀਕ ਤਿਸ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕਿਆ ਗਨੀ ਰਹੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਆਕਾਸ ਧਰਤੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ ਘਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਬਣੀ ਵਿਚ ਕਰਤੇ ਵਰਤੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਝੂਠ ਕਹੋ ਕਿਆ ਗਣੀ ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਨਿਤ ਨਿਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਬਫਾਵੈ ਦੁਰਮਤੀਆ ਜਬ ਆਣੇ ਵਲ ਬੰਚ ਕਰ ਝੂਠ ਤਬ ਜਾਣੇ ਜਗ ਜਿੱਤੀਆ ਐਸਾ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਏ ਰਾਮ ਰਾਵ ਸਾ ਵੇਲਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਜਿਤ ਆਏ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਸੇ ਤਿਸ ਨਾਨਕ ਲੈ ਛਡਾਏ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਏ ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ

मुरारी सोही महला पंजवा। गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बिनोद मंगल सुखताहा। चल सखिए प्रभ रावण जाहा, साजना की चरणी पाहा। रहाओ कर बेनती जन धूर बादशाहा, जन्म जन्म के किल विखलाहा। मन तन प्राण जीओ अरपाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा। दीन दयाल करहो तुसाहा, नानक दास हर सरण समाहा। सूही महला पंजवा। वैकुंठ नगर जहा संत वासा, प्रभ चरण कमल रिद माहे निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत ना पुंच मन माही, अचरज सात आके बरने न जाही। लोभ मुआ त्रिसना बुझ थाकी, पार ब्रह्म की सरन जन ताकी। जन्म जन्म के पै मोह निवारे, नानक दास प्रभ कृपा तारे। सोही महला पंजवा। अनक बींग दास के प्रहरिया, कर कृपा प्रभ अपना करिया। तुम्हें छुड़ाए लियो जन अपना, उर्ज प्रयो जाल जग सुपना। रहाओ पर्वत दोख महाबिकराला, खिन महदूर किए दयाला। सोग रोग बिपतत भारी, दूर पई जपना मुरारी। दृष्ट धारली नो लड़ लाए, हर चरण गहे नानक सरणाए। सोही महला पंजवा। दीन छुड़ाए दुनी जो लाए, दोही सराई खुनामी कहाए। जो पावै सो प्रवान, अपनी कुदरता पे जान। रहाओ सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी न जाए। सर्ब निरंतर एको जागै, जित जित लाया तित तित को लागै। आगम गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोला बोलाया तेरा। सूही महला पंजवा। प्रातः काल हर नाम उचारी, ऊत की ओट सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवै मन के काम। रहाओ प्रभ बिनासी रहन दिन गाओ, जीवत मर्त नेह चल पावै थाओ। सो साहो सेव जित तोट नावै, खात खर्चत सुख आनंद विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम त्याया। सोही महला पंजवा। गुरपुरे जब पए दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई कहाल। पेख पेख जीवा दर्स तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कमन हमारा, रहाओ साध संगत सेव प्रीत बने आई। पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, जप हर हर नाम अचरज प्रताप। जाल न साका तीने ताप, निमख न बिसराहा। हर चरण तुम्हारे, नानक मागै दान प्यारे। सोही महला पंजवा। से संजोग करहो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गावै गुण सदा रसाला। रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करहै बसा तिस नेरा। जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम राम संतन सुख माना, नानक देवनहार सुजाना। सोही महला पंजवा। बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंधा नित पारच। माधवे भज दिन नित रहणी, जन पदार्थ जीत हर सरणी। रहाओ कारत बेकार दो कर चारत, राम रदन राम रतन रिद तिल नहीं धारत। भरण पोखण संगौद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरन समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सोही महला पंजवा। साध संग तरै भै सागर, हर हर नाम सिमर रतनागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सबिन से गुरपुरे मिल पापत जायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुहाओ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिखत हुए ताप आई है। सरन पए जब दीन दयाला, नानक जाचा संतर वाला। सोही महला पंजवा। घर का काज न जानी रूड़ा, झूठा धंधा रचियो मूड़ा। जिस जित तू लाव है तित तित लगना, जा तू देह तेरा नव जपना। रहाओ हर के दास हर सेती राते, राम रसायण अन दिन माते। बाह पकड़ प्रभापे काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे।
उदर स्वामी प्रभ

अंत गया पछताया तिन बिन नावै को बेली नाही पुत कुटंब सुत भाई नानक माया मोह पसारा आगे साथ न जाई हों पूछो अपना सतगुरु दाता किन बिद दुत्तर तरिए राम सतगुरु पाए चलो जीवतियां इव मरी है राम जीवतियां मरी है पौजल तरिए गुरमुख नाम समावै पूरा पुरख पाया वडभागी साच नाम ले बुलावै मत प्रगास पई मन माने आराम नाम वड्याई नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई सूही महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

तेरी राम। सार न जाना तू वडदाना कर रे मत मेहर मत साई। कृपा की जय सा मत दी जय आठ पहर तुद तिहाई। गर्भ न की जय रेण हो भी जय ता गत जी अरे तेरी। सब ऊपर नानका ठाकुर मैं जे ही खणचेरी। तुम गहोर अत गहर गंभीरा तुम पेर हम बहरिया राम। तुम वडे वडे वड ऊंचे हो इतन कलहोरिया राम। हो कृष्णा ही एको तू है आपे आप सजाना। अमृत दृष्ट निमक प्रभ जीवा सर्व रंग रसमाना। चरण सरणी दासें दासी मन मौले तन हरिया। नानक ठाकुर सर्व समाना आपन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम। सुरत मत चतराई तेरी तू जाना है जाना राम। सोई जाने सोई पछाने जाओ को नदर सिरंदे। मन भूली बहुती राही फाती माया फंदे।

हरे मुख हर अरादे मेरा राम हर अरादे जम पंत सादे दुख न व्यापै कोई जल थल मैयल पूर्ण स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह बेकार नाठे प्रभ निरहु ते नेरा नानको प्रभ कृपा की जय नेत्र देखें दर्श तेरा कोट करन दी सै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम सुन सुन ए मन निर्मल होवे कटिए जम की फांसी राम कटिए जम फांसी समर अविनाशी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज ध्याना काल माल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अविनाशी करोड़ अस्त्री टहल कमावे संत चरण परब मार्ग राम भव सागर नाम हर सेवा जो चढ़े तिस तार ग्राम भव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे मां बेकार गए सुख उपजे बाजे अनहद धूरे मन फंजत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वड्याई ए तन होए वडभागा राम एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला सब कुछ तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहि नौरगुण प्रीतम सुख सागर संसंग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा की जय कीनी चरण कमन मन लागा सुई महला चौथा हर जपे हर मंदिर साजया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावे राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकथ कहानी भला संजोग मूर्त पल साचा अनदिन नीप चरखाई जन नानक प्रभ हे दयाला सर्व कला बने आई आनंदा वाजे नित वाजे पार ब्रह्मन उठा राम गुरुमुखे सच करणी सारी बिनसे भ्रम पै झूठा राम अनद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिसी बणियाए सो प्रभ अपना करया करमै नवनिध भरे भंडारा राम नाम मन लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरै पूरन जाके भावगा छाया प्रभ छत्रपतल कीनी सगली तप्त बिनासी राम दुख पाप का डेरा ढाठा कार्ज आया रासी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बुलाया सच धर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याई सोत बैस्त खलिया गुण निदान सुख सागर स्वामी जल थल मैयल सोई जन नानक प्रभ की सरणाई तिस बिन और ना कोई मेरा घर बनया बन ताल बनया प्रभ पर से हर राया राम मेरा मन सोहया मीत साजन सरसे गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु ते हाय साचा सगल इच्छा पाइया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वधाइया करी नदर स्वामी सुख है गामी हलत पल सवारिया बिनवंत नानक नित नाम जपिए जीव पिंड जिन तारिया सोई महला पंजवा पैसा गुरु पैसा गर तरिया हर हर नाम ते हाय राम बोय थड़ा हर चरण अरादे मिल सतगुरु पार लंघाए राम गुर शब्दी तरिए बहुड़ न मरिए चूकै आवन जाना जोक्ष करै सोई फल मानो ता मन सहज समाणा दुख न भूख न रोग न व्यापै सुख सागर सरणी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आप दड़ा मन आगे तरिया सर्वज ठाकुर दीने राम करे अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई आनंद मनो सिमरो प्रभ साचा विछड़ कब हो न जाई सावड़ भागण सदा सुहागण राम नाम मन गुण चीने कहो नानक रवै रंग राते प्रेम महारस पीने
अनुज बनोद पहनित सखिए मंगल सदा हमारे राम। आप नड़े प्रभ आप सिंगारी सो भवंती नारे राम। सहस भय पै कृपाला गुण अवगुण ना विचारया, कंठ लगाए लीने जने अपने राम नाम उतारया। मान मो मद सगल व्यापी कर कृपाया अपने वारे, कहो नानक पै सागर थरया पूर्ण काज हमारे। गुण गोपाल गावन सखी हो सगल मनोरथ पाए राम, सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार ते हाय राम। जप एक प्रभु अनेक रव्या सर्व मंडल छाया, ब्रह्म पसारा भम प्रसरया सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल थल मैल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाय, देख दर्शन नानक बिग से आप लय लड़लाए सुई महला पंजवा। अब चल नगर

आप करे आप पीने उपाहो गुरुमुख सेवा थाई पवे उन मन तत् कमाहो मस्कत लहो मजूरिया मांग मांग खसम धरा नानक पुर दर वे प्रवा तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे प्रवा महला पहला उजल मोती सोने रत्न नाल जड़न तिन जर वैरी नानक जे बुढ़े थिए मरण पौड़ी हर सलाई सदा सदा तन मन सौप शरीर गुर शब्दी सच पाया साचा गहर गंभीर मन तन हृदय रव रहया हर ही राहीर जन्म मरण का दुख गया फिर पवे न फिर नानक नाम सुनाहे तू हर गुणी गहीर श्लोक महला पहला नानक ए तन जाल जिन जलिया नाम विसारया पौधी जाए पराल पिछे हथ न अंबड़ै तित निबंध ताल महला पहला नानक मन के कम फिटया गणत न आवई किति लाहा सहम जा बख्शे ता थक नहीं पौड़ी सच अमर चलायो कर सच फरमान सदा निचल रव रहा सो पुरख सजान गुर प्रसादी सेविया सत शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम गोचर अलख है गुरमुखर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरया आन खोटे खरे परखियन साहिब

दोए पाव चढ़िए सोहोर, बाहर तोती तुम्बड़ी अंदर विसने कोर, साध पले अण नाते चोर से चोरा चोर। पौड़ी आपे हुक्म चलाएंदा जग तंदे लाया, एक आपे ही आप लाएं गुरते सुख पाया, दै दिस ए मन तामदा गुरु ठाकर हाया, ना मैनू सब लोच दी गुरमति पाया, तुर लिख्या मेट न सकी है जो हर लिख पाया। श्लोक महला पहला, दोए दीवे चौदह हटनाले जेते।

तेरी आसव तेरी जुगता, चरण पखारो कर सेवा जी ठाकुर भावै, हो कृपाल दयाल प्रभ नानु गुण गावै। बिलावल महला पंजवाओ मृत हसै सुर उपरे, पशुआ नहीं बुझै बाद साध अंकार मह, मरना नहीं सूझै सतगुरु सेवो अपना। काहे करो भागे देख कसम रंगला, काहे भूल लागे रहाओ कर कर पाप द्रव सन किया।

0: काम क्रोध स्तन तेजात तृप्त अघाय प्रेग प्रभ दर्शन अमृत रसन भोजन खात चरण शरण नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात बिलावल महल्ला पंजवा राख लिए अपने जनया कर कृपा हर हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रहाओ गुण गोविंद गावे प्रभ सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गए शरण सुख दाते गुर के वचन जपे हर जाप सागर तरे ब्रह्म पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप बिलावल महला पंजवा ताप लाया गुर सिरजन हार सतगुरु अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार रहाओ कर मस्तक धार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम रास दीनो दास की राज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परमान राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दोपदे कर सतवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु शब्द अदारो दी उजारो दीपा बिनस अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ बिसमन बिसम पहे जब पेख्यो कह न जाई वड़ियाई मगन पहे उआ संग माते ओत पोत लपटाई आल जाल नहीं कसु जंजारा अम्बद नहीं भूरा ऊचन ऊंचा बीच न खींचा हो तेरा तू मेरा एक अंकार एक पसारा एक है पारा एक बसीर एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचो सूचा सूचा अंतरांता सदा बेअंता को नानक ऊंचो ऊंचा
1: बिलावल महला पंजवा बिन हर काम न आवत है जास्यों राच माच तुम लागे ओहो मोहनी मोहावत हे रहाओ कन कामनी से सोहनी छोड़ किनै मैं जावत हे इन उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बिखट गौरी खावत हे तृण को मंदर सास वार्यो पावक तलाए जरावत हे ऐसे गढ़ मह हैठ ठीलो फूल फूल का पावत हे पंच दूत मूड पर ढाडे

रहाउ। कुल समुद्रे खिन पीतर जन्म जन्म की मल्लाही, सिमर सिम स्वामी प्रभ पनाऊ, अंध सिति बिखिया मनुगा बगाही। चरण प्रभु के बोहे।

गुरुदेव रहा आदि मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनाए आपो अपने सेव की आपे रखे प्रभ मेरे को बड़ प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर बस कीने जिन सगले जंत शरण कमल नानक शरण आई राम नाम जप निर्मल मंत बिलाव महला पंजवा ताप आप ते राखे आप चीतल भय गुर चरणी लागे राम नाम हृदय में जाप रहाओ कर कृपा हस्त प्रभ दीने जगत उधार नाभ कण प्रताप दुख बिनसे सुखन प्रवेशा तृष्णा बुझी मन तन सत्राप अनाथ कुना

विचार रहाओ। पतपानु पर बिरत मारो तुमरे हमरे दोख हृदय मत हरो। जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही हो मैं पटल कृपा कर जारो।

तरण कैसे करुण गुरु पद उदाहरण राख स्वामी आप भरोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिखे आओ उदाहरण राख स्वामी आप भरोसे रहाओ सिमरन

जो प्राणी कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुर जेहे भेद बतावै कौ नानक सोई नर गुरु जो प्रभु के गुण गावै बलावष्टपदी महला पहला घर दसवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद निकल मसै देखै सब सोई गुरमुख बिरला बूझै कोई बिन भै पया भगत न होई बिन शब्दे बिन रत्ते सदा सुकोई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रसमान रहाओ ज्ञान त्यान कथा सब कोई कथ कथ बाद करे दुखोई कथ कहण दे रह ते रह न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान त्यान सब गुरते होई साची रहत साचा मन सोई

और उनके से पावे। हर जिसे भी अंतरजामी कटकड़ंतर जिसकी जोसमानी तिस नाल क्या चले पैनामी साचा नाम साचा शब्द जाना है आपे आप मिले चुके अमान है।

कर, ताकि मित ताकि मित न जाने कोई, जल थल महील सोए कर बंदना लख बारू, थक पर्यो प्रभु दरबारू, प्रभु करहो साधु धूर। नानक मनसा पूर बिलावल मुहला पंजाब, प्रभु जन्म मरण निवारू, हर पर्यो दुबारू, गह चरण साधु संग, मन मिष्ट हर हर रंग।